0: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तडपाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा
1: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तडपाएर
0: सीआरबीटी नम्बर 01300044 29 सीआरबीटी नम्बर 60 45 16 52 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत सन्तोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी माया गर।

0: समिति हो चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खै खै बहु कोई लोटरी भर दिल
2: आगे समिति हो लोटी पढ़ती हूँ छापता ही गुरी
1: भर दी आ भर दी लोटरी खाली पढ़ दी बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खै बिस्ता खै मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खै मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खै मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सिद्धार्थ
2: बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: निकट मा दिदी बहिनी विकट मा दिदी बहिनी

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानली झाँसी मरी बुझी मरी व्यङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दै भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दी वेबसाइट ना URL चेक लना आक्षेपक घटना तल आपिबै लागि समय समय री आफै न पासपोर्ट फेरदिल परिम नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्कता न ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सबै भरिलाई
4: निकट मा दिदी बहिनी विकट मा दिदी बहिनी।

0: कमी छ चौदह के में बोधे लोटी पड़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिल
2: आई समी जो लोटरी पर्दी छाता गुरी
1: भर्दी आ भर्दी लोटरी खाली पड़ी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनई बनी खाई बिशा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले आप विवरण खाई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आफै भने आरे
2: सिद्धार्थ ब्याकर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकट मा दिदी बहिनी विकट मा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी।